संत ही आए केते तेरे गावनारी गावन तुझनो पवन पाणी वसंतर गावे राजा धर्म दुआरी गावन तुझनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारी गावन तुझनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरी सदा सवारी गावन तुझनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते अंदर नाले गावन तुझनो सद समाधि अंदर गावन तुझनो साध विचारी गावन तुझनो जति सती संतोखी गावन तुझनो वीर करारे गावन तुझनो पंडित पढ़न रखी सर जुग जुग वेदा नाले गावन तुझनो मोहन या मन मोहन सुरग मश पाया ले गावन तुझनो रतन पाए तेरे आठ तीर्थ नाले गावन तुझनो जोध महाबल सूरा गावन तुझनो खान इंचारे गावन तुझनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुझनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुझनो गावन से मैं चेतन आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा साचो साहेब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर करू जनसी माया जिनो पाई कर कर देखा है कीता अपना ज्यों तिस दी वड्याई जो तिस भावै सोई कर सी फिर हुक्म न करना जाई सो पातशाह शाह पात साहेब नानक रहन रजाई।

रात जैन दिन करके कीती रात खासम विसार है ते कम जात नानक नावे बाज सनात राग गूजरी महला चौथा हर के जान सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुरपास हम कीरे किरम सतगुर शरणाई कर दया नाम प्रगास मेरे मीत गुरदेव मोह राम नाम प्रगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीर्त हमरी रह रास रहाउ हर जन केवड़ भाग वडेरे जन हर हर शरदार प्यास हर हर नाम मिलै तृपदास है मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम न पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखा लिखास धन धन सतसंगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मानो चित वह उदम जा हर हर जी ओ प्रया सैल पत्थर मैं जन तो पाए।

जनन पिता लोक सुत बनता कोई न किसकी धरिया सैर सैर रिज कसंबाही ठाकुर उनका ही मन पौ करिया ऊडे ऊड्या वैसा कोसा तिस पाछे बजरी शरिया तिन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया सब निधान दस अष्ट सुधान ठाकुर करतल तरिया जन नानक बल बालू सद बल जाइया तेरा अंत न पार वरिया राग आसा महला चौथा।

प्रणवत नानकतन की शरणा जिन तू नाही विसरिया। आस्था महला पंजवा भई प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की है तेरी भरिया। अबर काज तेरा कदना काम मिल साध संगत।

0: बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।

संसार दे उत्ते दुनिया उत्ते बाबे क्या ते बाबर क्या दी टक्कर पहले दिन तो चलती आ रही है, जिसमें सिख कौम का खुरा खोद मिटाउण दी खातर

एक होते सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै

वैभव त्रिगुण अतीत काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोहना मनुष्यों ल्यावे तब ही आत्म तत् को दर्शे परम पुरख कह पावे काम क्रोध हंकार लोभ हठ मोहना मनुष्यों ल्यावे

बन से सदन सब कर समझो, बन से सदन सब कर समझो, बन से सदन मन ही माहे उदासा, मन ही माहे उदासा, मन ही माहे उदासा।

गोबिंदे मकंदे उधारे बारे हरिओं करियो निर्नाम काम प्रयात छंदो चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र धारणी चतर चक्र जानी चतर चक्र वरती चतर चक्र भरती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने जा श्री छंद न सतर न मित्र न परम न पितर न कर्म न गाय जन्म न जाय न चित्र न मित्र पर पवित्र प्रतिशा दिशा दिशा कृ साई भगवती छंद प्रसाद सतकाशते किया सज देसा किया पज बेसा किया गण कर्मय किया पज परमय किया पज लोक किया दत सोक किया भूत वर्णय के भूत करणय के राजन प्रभाय के धर्म बुझाय के अशोक वर्णय के सर्वा परणय हे जगतं कृतियं के सदरं सदरियं के ब्रह्मं स्वरूप ज्ञान पवन उप ज्ञान देवं के आप पीवं के चित्रं मेहमय के चाधीमय गुरु गिरिया करी मरहा कै के पाक बेअब हैं के गैबुल गैवें के अहबुल बनाएं के शान शाएं के कारण कन्यादय गुरु जी व्यादय के राज करीमय के कर्मं क्रीमय के सर्वं कली हैं के सर्वं गली हैं के सर्वत्र मान्य हैं के सर्वत्र दान्य हैं के सर्वत्र गौण हैं के सर्वत्र पावन हैं हे सर्वत्र देश है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र राज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र दीना है के सर्वत्र लीना है के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाव हे सर्वत्र देश है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी हे सर्वत्र राजा के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र साज्य है के सर्वत्र राजा है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र मान्य है सदैव धान्य है के सर्वत्र जाते हैं के सर्वत्र साते हैं के सर्वत्र भान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के ब्रह्मं सीम है के अगल राम है के साहब गुलाम है के उष्ण वजू है तमाम रजू है मेरे गुलाम है सलीम समाम है गनी मल सिखाता है गरीब वाल बरा साहब ने मकाना है जमीन जमान है जमीन तमाम है रजू वाल निधान है हरी फल जी मैं रिया के जी ने एक फल रंग है तेजा पंग है आजीज निवाज है गरीब वाल खराज है द्रोत स्वरूप है द्रमोत बभूत है प्रभोत प्रभा है सदम सुधा है सदैव स्वरूप है बेदी अनूप है समाज सुधराज है समाज सुल सलाम है सर्व गाम है निर्वाज रूप है गाज रो

अनंगी अनामे तरपंगी तरकामे नरपंगी स्वरूपे सरपंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न दाता न माता न जाता न पाता न विवाह हरी गाय कौमी गाय सदैव स्वरूप वेदी अनूप समस्त प्रराज सर्वसार सदैव प्रवाह जय अजाय भगवती चंद प्रसाद हेजार जूर है कि हाजर हजूर है मेसर राम है हिमाचल राम है कसैर राग है जराग है कामन करीम है कि रोजी रह फिर राज करीम है कि रोजी रहा है कि राज कर करीमल कमाल है कोशन जमाल है करीम फिर राज है करीमल नवाज है हरीमल दुकान है राज रमकान है कलांकन प्रणास है समाज कुल निवास है अभंजल नियम है रजाय कर हिम है समाज कुल जबान के साहब किराए के नरकन प्रणास है मैं कुल निवास है कि सर्वल गवाना है मेरी सुंदर वन है तमाम तमीज है समाज कुल अजीज है पारम परम ईश है समाज कुल अजीज है रिजल देख है मेरी सलो देख है जमीन जमा है मेरी कुल वाह है श्रीमल कमाल है जो जमाल है जय जन प्रकाश है जन तो सुभाष है कि आज वो स्वरूप है कि मैं तो भूत है कि मैं तो बसा है कि आत्म प्रवाह है कि अजरंग नांग है कि मैं तो पांग है मद पार चंद तव प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मधाम हर भरिया गंज हर नर पर पांज गण गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नरिया खंड हर नरिया मांड गण भवनाश मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मधाम अंश जंग आसन पंग कुमा पार गठ मित उदार जल थल मांड दिस दिस पांड जल थल महंत जस जस बेअंत वन पवन आश त्रिस्तर दुराश राजन वाई जस अहंकार आदि गदनी नाद हर खंड ख्याल गुरवर अकाल गुर कर प्रणाम जय चरण नाम अंश जगात अज जिन बात आन जन जगात अंतरंज बात अंतट भंडार अंतट पार अडीठ कर्म आत टीठ कर्म अणब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत प्रसाद करुणालया है अरकालया है कल खंडन है मैं मंडन है जगदेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है द्रत के करण है जग के करण है मन मान्या है जग जान्या है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम पर है सर्वेश्वर है जगदेश्वर है ब्रह्मांड सह कल खंड सह परते पर है करण कर है जप जप है तप थप है कृता कृत है मृत अमृत है अमृता अमृत है करुणा कृत है कृता कृता तरणी कृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृता अमृता अमृत है जपा कृता अमृत अमृत है निर्नायक है कलपायक है विश्वंपर है करुणालया है निर्पनायक है कृपायक है भाव पंजन है हर गंजन है रिप दापन है जप जापन है अकलन कृत है सर्वा कृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म वास है जस जस है भुजंग प्रयाद छंद नमो सूर सूर्य नमो जल चंद्रे नमो राजे नमो इंद्रेन्द्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो वृंद वृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संतान संघ शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूज्य नमो पान पाने

काल जोगी सबकी यो वेदराज ब्रह्मा ज्योति यो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देवदान जशने बजायो आद अंत एक अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार दसी को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सिवकन को सिव गुण सुख दियो सकर्म को पल मोहबद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की दीर पछानत जिसी दे गुंजर सूला सब कर कृपा दृढ़ कर भूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछानाई गड़गड़ के बड़बड़ की जाने जब उद करक करा करतारा।

0: केवबुदीरन दिल्ली तरसी दे वसनीक स्रोतियो तुसी ये प्रोग्राम FM रेडियो CISK 94.3 तो सुन रहे हो। ये प्रोग्राम गुरुद्वारा साहिब वैष्णव सिंह सवा विलियम स्लिप तो प्रसारित किया जा रहा है। उम्मीद रखते हां कि इस प्रोग्राम नु होर भी खोज भरपूर बनाउण लई तुसी सानू सुझाव दिंदे रहोगे।
1: साडे स्टूडियो दे टेलीफोन नंबर तां आप जी नू पता ही है, जे नहीं तां ओ भी लिख लो जी। एरिया कोड 250-392-3374 अते फैक्स नंबर एरिया कोड 250-392-3375।
2: साडा ईमेल एड्रेस नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com। एक बार फिर नोट करो जी, singhsabha2@gmail.com।
3: You are listening Sikh Radio broadcasting from Gurdwara Sahib Western Singh Sabha Williams Lake. Any comments and suggestions please call 250-392-3874.

सच ब्रह्मांड सच तेल सच अकार सच प्रकरणे सर्व चार सच्चा क्रम सच्चा दीवान सच्चा प्रहुकम सच्चा प्रमाण सच्चा

राष्ट्रपति रमैया के गुण के प्राणी कवन मूल ते कवन स्थानी जिन तू सा जिन उबारिया बाट व्यवस्था तुझे प्यार है दूध भर जोगन भोजन सुख सूत बिरद पै ऊपर साख सैन मुख प्याओ बैठ पाओ दैन एह निर्गुण गुण कछु नाम पूजै बख्त लो तहो नानक तीजै जय प्रसाद हर ऊपर सुख बसै सुत प्रातमी बनता संघ हसै जय प्रसाद पी वह शीतल जला सुखदाई पावन पाव कमुला जय प्रसाद भुगै सब रसा सगल समग्री संघ साथ बसा दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना तिसै त्याग और संरचना ऐसे दुख मुड़ंद व्यापे नानक काट लेहु प्रभ व्यापे आदि अंत जोरा।

एकार तक प्रीत पशम संग हुए अंतकूप में पतत विकराल नानक काट लो प्रभ्याल करतूत पशु की मानस जात लोक बिचारा कर दिन रात बाहर पेखन तरमर माया छप नाय कश कर छिपाया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ समान अंतर अगर्म बाहर तन स्वाहा गल पाथर कैसे त्रै अथाह जाप अंतर बसै प्राप्याप नानक ते जन सह समात सुनंदा कैसे मार्ग पावै कर गलो ओढ़ बहावै कहां बुजारत बुझै डोरा निष्कई है तो समझै पूरा कहां बिसन पद गावै गंग जतन करै तो पी सरभंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तुआ उस गवन करतार करना मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाय सोआ वैना चीत जो बराई तां स्यों प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै अनंत केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मन प्रतीत काल नया वै मूढ़े तीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महालोक द्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो अपन कर कर्म तू ठाकर तुम पै अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा महसू कनेरे कोई ना जाने तुमरांत उचे ते उच्चा भगवंत सगल समगरी तुमरै सूत्र धारी तुम

मुख्यावता कह दुर्गंध बिन सिमरन नारायण बिरथा बिहाए मेघ बिना जो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन बैठे सब काम ज्यों कृपन के निरार्थ दाम धन धन ते जन जय कट बस्यो हर नाओ। नानक ताक बल बल जाओ रह तवर का चवर कमावत मन ही प्रीत मुखो कंडलावत। जानना प्रभु प्रवीण बार पेख ना काहू पीन अवर उपदेश है अपना करै आवत जावत जन्म मरै। जिसका अंतर बसा निरंकार तिसकी सीख करै संसार जो तुम भाने तिन प्रभु जाता नानक उन जन चरण प्राता। करो बिनती पार ब्रह्म सब जान है अपना किया पह मन है आप है आप आप करतन बेरा किसै दूर जनावत किसै बुझावत नेरा। उपाव स्यानव सगल ते रहत साव कच जान है आत्म की रहत जिस पावै तिस लै लड़ लाए संतन तरिया समाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरि सलोक। काम करो दर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नान प्रव शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदे। जेहे प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुबंधन तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे। जेहे प्रसाद बसह सुख मंदर तिसह त्याहे सदा मन अंदर। जेहे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रचना। जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यामन जोग। जय प्रसाद पाठ पटम हटावै तिसे त्याग कर्तवर लुभावै। जय प्रसाद सुख से सुई जय मन आठ पैर ताका जस कवि जय। जय प्रसाद तो सबको मन मुखता को जस रसन बुखन। जय प्रसाद तिरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म प्राप्ति जब दरगह मन पावै नानक पासे ती कर जावै। जय प्रसाद आरोपन चंदेही लिव लव तिस राम स्नेही। जय प्रसाद तिरौला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत। जय प्रसाद तेरे सगल छित्र ढाके मन तरनी पाठा कर प्रभु तंक। जय प्रसाद तुझको न पहुँचै मन सा सिमरो प्रभु उचै। जय प्रसाद पाए दुर्लभ देह नानक ताप की भगत करे। जय प्रसाद अभुखन पैरी जय मन ते सिमरत आलस की जय। जय प्रसाद असवह ससवारी मन तिस प्रभु को कबू नाम विसारी। जय प्रसाद बाग मिलख तनारा करो प्रभु अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई। तिसे त्याए जो कलख है इहा उह नानक तेरी रख है। जय प्रसाद करै पुन बहुदान मनाट पहर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को सा सितारी। जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरहु सदा अनूप। जय प्रसाद तेरी निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात। जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक तस्क। जय प्रसाद सुन कर्ण नाद जय प्रसाद विख है विस्माद। जय प्रसाद बुल अमृत रसना जय प्रसाद सुख है जय बसना। जय प्रसाद हस्त कर चलै जय प्रसाद संपूर्ण फल है। जय प्रसाद परम गत पावै जय प्रसाद सुख सह समावै। ऐसा प्रत्याग गौर कतला को गुर प्रसाद नानक मन जागो। जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल नमनो।

साजना किय तर्ज कथाष्टपति साधक सम्मुख जलहूत साधक संगमल सगली कोत साधक संगमित अपमान साधक संग प्रगट सो ज्ञान साधक संग बुझ प्रभ नेरा साध संग तभूत नेरा साधक संग पाय नाम रतन साधक संग कुपर जतन साध की महिमा वर्ण कौन प्राणी नान साध की शोभा ब्रह्म।

सात उपमा रहे प्रपूर, सात की शोभा का नहीं अंत, सात की शोभा सदा व्यंत, सात की शोभा उच्चे उच्ची, सात की शोभा मुच्चे मुच्ची, सात की शोभा सात बनाई, नानक सात प्राप्त न पाई, श्लोक मन सच्चा मुख सच्चा सोयावरना पेखा एक बिन कोय, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष, जैसे सूर सर्व को सोख, ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान, जैसे राज रंग को लागे तुलपवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीर देख, ज्यो वसुता को खुद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ, नानक ज्यो पाव का सह सुभाऊ, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल से निर्मला, जैसे मैल न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी कम हो प्रकाश, जैसे तारू प्रयाकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी उच्चे उच्चा मान अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पाए नानक जिन प्रभाव करे, ब्रह्म ज्ञानी सबल किरीना आत्मरस, ब्रह्म ज्ञानी कीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब पर मया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल दूता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार महा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ने धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का हो सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभसंग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुत्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता, ब्रह्म ज्ञानी का हो अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दस प्रभागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मनमा है, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कथ्य न जाय अधाकर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखान, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त दुखत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,

निबनी नान ब्रह्मगन सर्वकातनि श्लोक उड़ता रह तो अंतरनाम सर्व मैं पिख भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार नानक को प्रसन्न।

सब कीना कोट मदे किना बिरला कीना पला पला पला त्रा रूप सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सरवन बख्याणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्री श्लोक संत सरण जो जन पर सो जन उदरनहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार पदी संत का दुखन आजा कटै संत का दुखन जमते नहीं चुटै संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुख नरक मह पाए संत का दुखन मत हो मलीन संत का दुखन सुबा तेहीन संत के हते को रख न कोई संत का दुखन थान प्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन के दुखन काग ज्यों लवै संतन का दुखन सर्प जोन पाए संत का दुखन त्रिगत जोन क्रमाए संतन का दुखन कृष्णा मैं जलै संत का दुखन सब कुछ लै संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को ना है नानक संत पावै तो पी गत पाए संत कानंदक माँ अतताई संत कानंदक खिंट करना पाई संत का निंदक महा त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तहीन संत का निंदक दुखी अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा बिजोग संत की निंदा दुख मह दुख नानक संत पावै ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डाला गए संत के दुखी को सत्या गए संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख से डरै संत के दुखी को नाही ठाऊ नानक संत पावै तां लै मिलाए संत का दुखी अद बीते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुंचै संत के दुखी को ध्यान प्रमाइया संत का दुखी उजड़ पाइया संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यो सास बिना मिट टक्की लोथा संत के दुखी की जड़ किसना है अपन भी जापे ही काहे संत के दुखी को वरना रखन हार नानक संत पावै तां लै उबार संत का दुखी यों बिललाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजा ज्यों पाव की तन ही त्रापै संत का दुखी छुटै के ला ज्यों बुआर तिल खेत मह दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सदमित्या कहत किरत निंदक का धोरी पया नानक जो तिस पावै सो इच्छिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाइया संत का दुखी न मरै ना जवाइया संत के दुखी की पूजन आस्था

चरण सात के तो है तो पियो और साध को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वट भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाई है अनक गणते साधु रख है हर गुण गाय अमृत रस चख है ओट गही संत दरिया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवन हार भूखे को देवते आधार सर्व निधान जाकी दृष्टि माए पूरब लिखे का लेना पाए साव के तिस काव करना जोग तिस बिन दूसरा हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी साव ते ऊच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक तू जन निर्मल किया जा कह मन गुर की प्रतीत तिस जन वैहार प्रवतीत भगत भगत सुनी।

का नेत्र पोर तिसका मंत्र न जाने होर अनद्रूप मंगल सजा कह सर्व शोक सुनिय करता कह राज मह राज जोग मह जोगी तप मह तपीतर ग्रस्त मह भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जान पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान दिन दे जनदास नाम त्या वैसे गुण मैं जाकू परमाए जन्म रह फिन आवै जाए।

जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्व सुख का दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावै तिसका दर्शा पा मिटावै अवर स्याण तगली साड तिस जन की तू सेवा लाग आमजा न हो भी तेरा नान तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ तिसका संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिखी करै प्रतपाल सेवक हो गुरसदा दयाल सिखी गुरदुरमत मलहरै गुरबचनिया नाम त्रै सतगुर सिखे बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी है सतगुर सिखा हलत पल सवारै नानक सतगुर सिखो जी नाल समारै गुर कै ग्रह सेवक दूर है गुर की आज्ञा मन में सह आपस को कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सत्य हावै मन बिच सतगुर कै पास ते सेवक के कार्य रास सेवा करत होए ने कामी तिस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिससे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस विश्वे गुर का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गत जान सो सतगुर जिस हर नाव अनुबार गुर को बल जाओ सत

आनंद आईया नानक ऐसा गुर बड़भागी पाईया सफल दर्शन पेखत पुनीत पर सतचंद गत निर्मल रीत भेट संग्राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर कह दवे सुन कर वचन करने गाने मन संतोख खत्म पतियाने पूरा गुरा खोजा का मंत्र अमृत पिख है हो संत गुण व्यंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिसलै मिलाए जे बाय पुस्तक अनेक सतपुरख पूर्ण बबेक काहू बोलना पौचत प्राणी अगम गोचर प्राप्त निर्बानी निराहार निर्वैर सुखदाई ता की कीमत किन न पाई अन भगत बन्नत करै चन कमल हृदय सिमरै सत बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने इहो हरस पावै जन कोई अमृत पीवै अमृत सोय उस पुरख का नाही

अंधकार दीपक परगासे नानक परमो दुख ते नासे सत माय ठांड वरताई अंध पया दुख नाथे पाई जन्म मन के मिट्यां देसे साधु के पूरन उपदेसे भाव चुका निरपोह बसे सगल ब्यान मन ते कह नसे जिसका साथ कृपा तारी सात संग जपना मुरारी सिख पाई चुके परम गवन सुनान कहार हर जसरवन निर्गुणा सरगुण पियो ही कला धार दिन सगली मोही अपने चरित प्रव्याप बनाए अपनी कीमत आपे पाई हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर को सोयो तो त्रव्या रूप रंग पै प्रकाश साधक संग रच रचना अपनी कल धारी अनकबार

समर्थ दृढ़ कर कहो नाम हरवत एतन संत हो भगवंत संजना का निर्मल मंत एकास रखु मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चाकुन छुटता वह सो तनहार सेवा ते पावह जिस को नित बचे मीत सो सुख साधु संप्रीत जिस शोभा को करह पली करनी सा शोभा पजहर की सरनी अन क्यों पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवखद लाए सर्व निधान हर नाम निधान जप नंदर गय प्रवान मन प्रभु दो हर कह नाए जय दिस्तावता बैठाए ता को बिघन ना लागे कोई जा कह हृदय बसार सोए काल साची ठांडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ पाओ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रकाश चित कर जाए बत्याव नासी कहो नानक काटी जमपाती सत विचार कह जन साचा जन्म रसु कचु कचा आवागमन मिटै पल सेव आप त्याग सन गुरुदेव यों रतन जन्म कहो योदारू हर हर सिमर प्राण आधार अनक पावना छूत नहारे सिमर शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन वंशत नानक फल पाए संग न चालस ते रतना तू क्या लगता वह मूर्ख मना सोतमीत कुटंबर बनता इन ते कहो तुम कौन सनाता राज रंग माया विस्तार इन ते कहो कौन छुटकार आसस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पसारी जिन दिए तिस बुझना बिगना नाम विसार नानक पछताना गुर की मत तूले अन्य भगत बिना को डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल हो तुम्हारो चीत चरण कमल रखो मन माहे जन्म जन्म के किल बिछ जाहे आप जपो अबरा नाम जपावो सुनत कहत रहत गत पावो सार भू सतार को नाओ सह सुबह नानक गुण गाओ गुण गाव तेरी उतरस मैल बिनस जाय हो मैं बिफैल होहे अचिंत बसै सुख नाल सास बरा सर नाम समाल छाट सनम सवली मना सास संग पावे सचना हर पूंजी सन करो व्यवहार यहाँ सुख तरगा जकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक डाके मस्तक लेख एको जापे को सलाहे सिमर

और एक छुना दिखते पाप मंतव कहते होता। जब धारी अपन सुन समात तब बैर विरोध के संक मात, जब इसका वरण चेहना जापत तब हरक शो को किसे व्यापत। जब अपन आप पार ब्रह्म तब वो कहा कि सोवत परम अपन खेल आप वर्ती जा नान करना हार ना दूजा। जब होवत प्राव केवल धनी तब अन मुकत कहो किसको गनी, जब एक हरक म पार तब नरक स्वरूप कहो कौन तार। जब निर्गुण प्राव सह सुवाए तब शिव सकुत कहो किस खाए। जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन डर कवन कत डर है, अपन श्रेता करना हार नानक ठाक रगम पार। अवनाशी सुख अपन आसन तह जनमन को काम विनाशन, जब पूर्ण करता प्रभ सूर तब जम की त्रास कहो किस होए। जब अवगत गोत्र प्रभिका तब चित्र गोपत किस पूछत लेखा, जब नाथ नरंजन गोत्र गादे तब कौन छिटे कौन बंधन बाधे। अपन आप ही अचर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा, जह निर्मल पुरुष पुरुष पत होता तह बिनमैल कहो क्या होता।

दोषं समावत किसै भूकम तृप्ताव करन करा मन करन हार नानक करते कना सुमार जब अपनी शोभा पन संग बनाई सब कौन माय बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कला पे पर बीन तै वेद देव कहाँ कोचीन जब अपन आप आपुर तारा तो सगन अब सगन कहाँ विचार है जह अपन उचापन अपने रात है कौन ठाकर कौन कहिया चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जय अथल छेदा भेस माया उहां किसै व्यापत माया आपस को पया देश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तह कौन अचिन किसला कह चिन्ह।

तिसै त्यात जिस भावै तिसलै मिलाए भगत करे हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मान्या करन हार नानक जान्या जन लगा हर एक नाय तिसकी आस न मिटी जाए। सेव को सेवा बन्याए हुकम बूझ परम पद पाए इसके ऊपर नहीं विचार जा कह मन बसया निरंकार बंधन तूर पै निर्वैर आन दिन पूजा गुर के पैर ए लोक।

हर दुर्लभ देह का प्रभु उदार। अमृत वचन हर के गुण गाओ, प्रांतन का यह सुहाओ। आठ पहर प्राप्त खुनेरा, मिटा ज्ञान बिनसै अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाबो, मन इच्छे नानक फल पाबो। हलत पल दो लो सवार, राम नाम मंत्र उतार। पूरे गुर की पूरी दिख्या, जिस मन बसै ते साथ प्रिख्या। मंत्र नाम पोह लवलाए, दुख दर्द मन ते पाओ जाए। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह निबह के तुम्हारी। एक काटे प्रखो मन माहे, नानक बहु नया वह जाए। तिससे दूर कहाँ को जाए, उबरै रखन हार त्याए। निरपौ जपै सगल पौ मिटै, प्रभु कृपा ते प्राणी चुकै। जिस प्रभु रखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन हो वसुख। चिंता जाय मिटै अहंकार, तिस जन को कोई ना पहुँचन हार। तेरे ऊपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताके कार्य पूरा। मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट, दर्शन पिघत उदरत श्रेष्ठ। चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप। धन सेवा सेवक प्रमाण, अंतर जामी पुख प्रधान। जिस मन बसै सोहोत निहाल, ताके निकट नाया बतकाल। अमर पय अमरा पद पाया, साध संग नानक कर ध्याया सलोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रगास। अष्टपदी संत संग अंतर प्रभु दिठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। सगल समग्री कस घट माहे, अनतरंग नाना दृष्टा है। नौ निध अमृत प्रभु का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सुन समाद अनहत नाद, कह न जाए त्रट विस्माद। तिन दिखिया जिस आप दिखाई, नानक तिजन सोजी पाए। सो अंतर सो बार अनंत, घट घट प्या प्रह भगवंत। धर्म है आकाश प्याल, सर्व लोक पूरन कृपाल। बंतन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंड तै दिशे समाये। तिस्ते पे नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ। वेद प्राण स्मृत मह देख, सत्य सून खत्र मह एक। वाणी प्रभु की सब को बोलै, आप डोल ना कब हूँ डोलै। सर्व कला कर खेलै खेल, मूल ना पाइया गुण है मोल। सर्व ज्योत मह जाकी ज्योत, धार रहो स्वामी उत्पोत। गुर प्रसाद भ्रम का नाश, नानक तिन मह एव विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म। संत जना सुनह सुबचन, सर्वव्यापी राम संग्रचन। जिन जाता तिसकी ए रहत, सत बचन साधु सब कहत। जो जो हो सोई सुख मान, कर्म करावन हार प्रभ जान। अंतर बसै बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख समोही। आप सत किया सब सत, तिस प्राप्त सगली उत्पत। तिस भावै त करे विसार, तिस भावै तै कुंकार। अनकला लखी न जाए, तिस भावै तिस लय मिलाए। कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर। अंतर गज से आप जनाए, नानक तिस जन आप बुझाए।

के गुण गावष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म ने कटकर पेश सा सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतर चिंद आस अनित्या को तंग संजना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर करो हर तन के पालो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहित आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित्त तवहु नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बार बार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल ए रतन सुंत कुमावत होत उधार आप त्रैलोक सार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्दन हद बाजै सुन सुनंद करे प्रभु गाजै प्रगटे गोपाल महान कै माथे नानक उतरे तिन कै साथे सन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट कै बैर भय सवरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भय गुरुदेव पूरन हुई सेवक की सेवा

सिमरत काहे ना राम। वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। परम सम्मान योग शब्द गुरु तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाहे मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों, आप जी ने रात्रि वेले दे

हे भाई, इस सदा कायम रहने वाला हर नाम धन गुरु की शरण पैके हासिल करो। परमात्मा वालों वर्ती रजा अपने भले वास्ते जान।

0: 6 जून की रात 11 बजे के करीब सानू मिलिट्री कैंप विच ले जाया गया। साढ़े पहुंचने तो थोड़े समय बाद ही गोलियां चलन की आवाज सुनाई दी। असी सारे वाहिगुरू वाहिगुरू करन लग पे। असी सारे एहो सोच रहे सी कि कंपलैक्स अंदर तो बच गया सी, पर हुण नहीं बचते। पर दूजे दिन 7 जून सवेरे पता लगा कि दो नौजवान कंध टप रहे सन, उन्हां नूं गोलियां मार के मार दिता गया है।
1: श्रोतियों मेरे सूत्रां अनुसार भावे बहुत कार्यकारी सेवादार अपने बचाव के हर वसीले की भाल विच सन, पर पंच दर दी कुछ गिनती दे मर जीवड़े इस सर्व उच्चतम अते जान नालों वी प्यारे पवित्र अस्थान की राखी लई तणे बैठे सन। इन्हां दा आगू सिखां विच प्रमाणक सेवादार जरनैल सिंह खालसा ने गुरु भाणे नूं मंदे ते 6 जून नूं शहीदी प्राप्त कीती।
0: ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਸ ਬਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ

कल विचार सची नाम चंद्र माना। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने 12 भी लिखियां और जो काशी है उसके भी राजे ने गुरु घर का प्रेमी बनाया। उसे गुरु महाराज प्यार बराग के सुनियों की रचना की है। कथन करते हैं कि मैं परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, शोभा वडियाई नहीं देने वाले सतगुरु के चरणों में चंगी तरह प्यार के नाल मत्था टेकदा हूँ। जिस प्रकार एक चंद्रमा पानी के भरे हुए जो घड़े है जनेक घड़े या घड़िया उन्होंने प्रवेश करता उन्होंने अक्स पाता, इस तरह उस विचार के अनुसार परमात्मा जड़ा अनेक शरीर रूपी घाटा के प्रवेश होकर प्रकाश कर रहा, मैं उसने मत्था टेकदा हूँ। दोहरा ओनम श्री सतगुर चरण आदि पुरख आदेश एक अनेक भवेश सर घट घट का प्रवेश। कथन करते हैं श्री जो माया दे सहत ओंकार परमात्मा का स्वरूप सतगुरु जी सरगुण स्वरूप हैं, क्योंकि सरगुण जड़ा वो माया ने जो निर्गुण ग्रहण करता फिर सरगुण स्वरूप धारदा, तो जो ओंकार का स्वरूप सरगुण स्वरूप सतगुरु जी हैं उन्होंने पवित्र चरणों से मैं नमस्कार करता हूँ, जिन्हों के अंदर आदि पुरख सारे आदि पुरख परमात्मा आदेश तो मतलब से प्रवेश है। और जिस तरह एक चंद्रमा बेअंत घड़ियों के घट कारण नहीं होंगे अंदरले हिस्से प्रवेश करता, इस विचार के अनुसार एक जरा सारे का आदि पुरख परमात्मा अनेक घट शरीर अंतिश करण घटका तो मतलब अंतकरण उदे निवास किया होया, जिसने इस विवेक ज्ञान द्वारा निश्चा किया कि सतगुरु जी उस निरंकार का स्वरूप है, तो सतगुरु जी सरगुण स्वरूप हैं संत घट घट का प्रवेश शेष तह तहत नाल है। नेत नेत तहनेत वेद बंदी जन गावै आदि मध्य आरंभ सुते पुत है पुन होनम आदि पुरख आदेश चरण श्री सतगुर ओनम। नेती का मतलब ना इति जिहदा अंत नहीं पाया जाता बेअंत, ते बंदी जन जिहड़े हुंदे आ पाठ लो।

स्वयात तोर सदंड अगोचर दृष्ट दर्श आस पर्श और श्रोत मत शब्द मनोहर। फिर अगे आते आदि पुरुष धन कौन है? धन श्री गुरु नानक देव जी। छे तरह के रस मनने आदि पुरुष परमाद स्वय तुरस गंध अगोचर दृष्ट दर्श अस्पर्श स्रोत मत शब्द मनोहर। और दूरी फड़ा पाठ देख

0: आद पुरुष परमाद स्वाद रस पर चाहिए कि गलत कर देता है। स्वाद रस गंध अगोचर दृश्य दर्श अस्पर्श पुरुषम शब्द मनोहर लोग वेद गत ज्ञान लेते नहीं लाखा सेवा नेत नेत कर नमो नमो नम सतगुर देवा। इस वास्ते से ये पाठ गलत प्रिंट हुआ। ये पाठ हैगा आद पुरुष परमाद स्वाद स्वाद रस चाहिए स्वाद रस गंध अगोचर ये पाठ सो गया। इस वास्ते छे तरह के रस कड़े खट्टा मिठा कसैला लून वाला तिखा ते चरपरा ये छे रस मने ते छेयां तो फिर छे तरह के पदार्थ मने छत्ती प्रकार के पदार्थ बन जाते ते रसन गंध नाम भाषण होना ते नक अगोचर जिहड़ा गोचर विषय विषय नहीं आस्पर्श स्पर्श नहीं मनोचर मन के विषय नहीं देवा प्रकाश का समूह धनी श्री गुरु नानक देव जी जड़े है आदि तो परे है उन्हों का स्वाद रसना तो बासन नक इंद्रे के गोचर नहीं कि दस सके नक सुगंधी सुगंधी दस दूगा महाराज बारे की दसू दसोंगे फिर रसना फिर रस दस दूगी फिर आत्मा से उन्होंने रसना की दसेगी। दृष्ट दर्श आस परस दृष्ट दर्श ये भी पाठ देख लीजिए। दृष्ट दर्श आस परस सुरत मत शब्द मनोचर इतना दृष्ट दर्श आस परस सुरत मत सुरत मत चाहिए इन गलत शब्द है कहते उन्हों का जोड़ा दर्शन दृष्टि तो स्वर्श स्पर्श न त्वचा इंद्रिय स्पर्श तो रह के मैं चमड़ी भी हूँ दस दूगी हवा तकी ठंडी होर की दसूगी शब्द मनोचर फिर जरा सुरत बुद्धि दे शब्द जरा मन दे मनोचर मैंने गोचर बीचे नहीं है कि बुद्धि इसे शब्द का वर्णन करके दस सके। लोक वेद गत ज्ञान लखै ने अलख अपेवा उन्हां दी जिहड़ी गति है लोक ज्ञान एक तां लोकां दा ज्ञान एक वेदां दा ज्ञान ये दोनों नहीं जानते इस वास्ते सतगुरु जी अलख स्वरूप है ते भेद स्वरूप है उन्हें शक्ति व्यक्ति ना रखना बड़ा औखा उहदे भेद नूं पाउणा बड़ा औखा फिर ग्रंथ पढ़ के फिर भेद पा लांगे हैं थोड़ी जानकारी दिंदे आ उहदे मुकम्मल रूप नूं जानना बड़ा औखा। नेत नेत कर नमो नमो नम सतगुरु देव इस तरह कहिंदे जिहड़ा प्रकाश दे समूह सतगुरु गरीब नवाज जी नूं बेअंत वारी मन करके बाणी करके शरीर करके नमस्कार कर दें बेअंत वारी बाणी करके नमस्कार दें बेअंत वारी शरीर करके नमस्कार कर दें हुण सतगुरु दे दर्शन की महिमा कथन करदे हन। कवित दर्शन देखती ही सुध की न सुध रही बुद्ध की न बुद्ध रही मत में न मत है सुरत में न सुरत ओ ध्यान में न ध्यान रहो ज्ञान में न ज्ञान रहो गत में न गत है धीरज को धीरज गर्व को गर्व गयो रत में न रत रही पत रत पत है अदपुत पर मदपुत बिस्म बिस्म अश्चर्य अश्चर्य अत अत है। सुध नाम हुंदा खबर दा
1: ਤੇ ਚੇਤਾ ਚੇਤਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਮਤ ਨਾਮ ਅਕਲ ਦਾ, ਸੁਰਤ ਮੈਨੇ ਗਿਆਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੂਹ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਖਿਆਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੀ, ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਗਦ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਰੱਤੀ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਪਤ ਮੈਨੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਰੱਤੀ ਮੈਨੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁੱਧ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਔਰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਧੀਰੇ ਦਾ ਧੀਰੇ ਅਤੇ ਗਰਭ ਦਾ ਗਰਭ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਜ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਟਣਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਅਦਭੁਤ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਆ, ਬਿਸਮਨ ਤੋਂ ਬਿਸਮਨ, ਉਸਚਰਜ ਤੋਂ ਉਸਚਰਜ, ਮਹਾਨ ਤੋਂ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਛੰਦਾਂ ਦਾ ਸੋਰਠਾ ਦੋਹਰਾ, ਇੱਥੇ ਛੰਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜਣਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨੌਂ ਅੰਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਵਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਵੀ ਪਕੜਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕ ਇੱਕ ਲਾਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾਸਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤੋਕ ਵੱਲ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸੁੱਧ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਵੇ ਕੋ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।